Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. सजीवों, मनुष्य समेत सभी जीव जंतु के शरीर में जैविक क्रियाओं यानी बायोलॉजिकल फंक्शन के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। सजीवों द्वारा भोजन पोषक पदार्थ का अंतर्ग्रहण भोजन को शरीर में पहुंचाने की क्रिया पाचन अवशोषण और स्वागीकरण करने एवं अपच पदार्थ का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन शारीरिक वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। हमारे आहार में ऐसे फूड शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सके। इस तरह के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ऊर्जा उत्कों के रखरखाव और शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को 6 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और खनिज शामिल है। आइए विस्तार से इनके बारे में जानते हैं आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर को अच्छे तरह से काम करने के लिए मांसपेशियों के निर्माण तथा हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत जरूरी है। साथ में प्रोटीन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रोटीन के समृद्ध स्रोत में अंडा, मछली, मीट और बीन्स शामिल है। प्रोटीन शरीर को अमीनो एसिड्स प्रदान करता है। विटामिन, हमारे शरीर को विटामिन की बहुत ही जरूरत है। यदि किसी भी कारण कोई विटामिन हमारे शरीर को न मिल पाए तो हमारे शरीर विटामिन जनित रोगों से ग्रस्त हो सकता है।

0: विटामिन व पदार्थ है जो आपके शरीर को ग्रो करने में मदद करते हैं। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं तथा कोई बीमारी न आए। ज़्यादातर विटामिन हमें फल और सब्जी से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स एक अच्छे न्यूट्रिशन है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल या खनिज हमारे शरीर के ठीक ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करते हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हैं। इसके स्रोत में फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली शामिल है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च या मंड प्रमुख भोजन पदार्थ है जो कई तरह के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। आलू, साबुदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का आदि में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा ये पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वसा या फैट हमारे आहार का मुख्य घटक है और शरीर में कई काम करता है। इसके आवश्यक स्रोत में डेयरी प्रोडक्ट, मांस, बीन्स और नट तथा वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल है। फैट फैटी एसिड्स में पच जाता है जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। पानी को भी हम न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। यह पर्याप्त पानी पीने से शरीर में तरल संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलती है जो शरीर में पोषक तत्वों को परिवहन में मदद करते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने में सहायता करती है। इसीलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी न आने दें। किसी भी सजीव के लिए पोषण जरूरी है। इसके लिए शरीर क्रियाएं संभव नहीं है। जिस प्रकार से किसी वाहन के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आवश्यक ऊर्जा के विभिन्न अवयवों मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों एवं ऊतकों की मरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि सम्मान करने में योगदान करना है। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों एवं जंतुओं को उचित दशा में बनाए रखता है और उनका उचित संचालन कर उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में योगदान करता है। संतुलन भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। आमतौर एक ह्यूमन बॉडी को उसकी उम्र और जैविक क्रियाओं के अनुसार पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वर्कर्स के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं और इन्हीं मानक के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना है। स्वस्थ भोजन करने से सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि आपका दिमाग भी तेज होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाने से शरीर मजबूत होता है। स्वस्थ आहार हड्डियों को मजबूत रखता है। पौष्टिक भोजन गर्भावस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हरी सब्जियों और फल मोटापा, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाव करते हैं, खासकर वो खाद्य पदार्थ जिसमें फाइबर की अधिक मात्रा होती है। जितना हो सके तेल मसाले वाले खाद्य पदार्थ के सेवन से बचें। इनको लगातार सेवन करने से तरह तरह के बीमारियां आ सकती है। पानी खूब पिए। शरीर में पानी की कमी निर्जलीकरण का कारण बनती है, दैट इज डिहाइड्रेशन, जिससे किडनी की समस्या, त्वचा संबंधी समस्या, उल्टी, बुखार और कई अन्य परेशानियां हो सकती है। शुगर शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ज़्यादा शुगर युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे दांत खराब हो सकते हैं, मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्या खड़ी हो सकती है। उपवास करना शरीर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, साथ साथ शरीर की कई अन्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। हालांकि उपवास के दौरान आप नियमित रूप से पानी पीते रहे, फल, ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। तो दोस्तों, with this we come to the end of this beautiful program which was very informative. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye.
1: दोस्तों,

0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज मैटिनी शो कार्यक्रम में हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके लिए हमने एक बहुत ही खास मेहमान को आमंत्रित किया है। डॉक्टर संजय कुमार शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है। किस लिए प्राप्त है ये आप इस बातचीत में आगे जानेंगे। डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है आज विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में आकर।
0: जी, मैं आपसे दूसरे नंबर पर यह सवाल पूछूंगा कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार क्यों मिला है। सबसे पहले तो ये जो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, तो ये किस मर्ज के लिए लगा है?
1: बेसिकली मैंने MSc मैथमेटिक्स और VET किया।
0: हाँ।
1: और फिर देखा कि कुछ बचपन से ही लगने लगता था मानसिक विक्षिप्त मनोरोगियों
0: जी,
1: तो फिर मैंने जाके फिर डॉक्टरी की। डॉक्टरी मतलब वो नहीं की थी कि MBBS वाला, नेचुरोपैथी में डॉक्टरी की थी हमने एक्चुअली।
0: अच्छा, गजब गजब, क्या बात है। ये बताइए कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से किस बात के लिए सम्मानित किया गया था और आपके काम का क्षेत्र क्या है?
1: विगत 36 वर्षों से मैं मानसिक विक्षिप्तों की सेवा स्वयं के व्यय पर करता हूं
0: जी,
1: यानी कि मेरी कोई NGO नहीं है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और मैं ग्रामीण क्षेत्रों में बुंदेलखंड में, वैसे मेरा कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है, जहां से भी मुझे जानकारी मिलती है, कॉल आता है, तो मैं स्वयं के व्यय पर स्वयं का खर्चा लगाकर वहां जाके ऐसे मानसिक विक्षिप्तों की सेवा करता हूं जो कि कई कई वर्षों से जंजीरों से अपने घर के कोने में, आंगन में, अपने खेत में, हार में कहीं बंधे रहते हैं। तो मैं वहां जाकर देखकर और पहचान कर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन करता हूं, और जैसे ही उस मानसिक विक्षिप्त को छोड़ा जाता है तो वह किसी का मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, आगजनी कर देते हैं, बच्चों को उठा के मार देते हैं, तो वो वहां जाके मैं ऐसा कार्य करता हूं। तो शायद भारत सरकार ने इस लायक मुझे समझा कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 मिला
0: जी। मुझे ये बताएं कि ये काम आपने किस प्रेरणा से शुरू किया था, क्या कोई ऐसी घटना थी जिसने आपको प्रेरित किया, इस काम की तरफ मोड़ा?
1: हमारे जो पिताश्री थे वो शिक्षक थे
0: जी,
1: तो मैं ये सोचता था कि MSc VET करने के बाद शिक्षक बनूं।
0: आप छतरपुर में थे?
1: जी जी जी हाँ, मैंने पूरी हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैंने छतरपुर से ली है। तो मैं सोचता था कि चलो, जैसे हमारे पिताजी एक महान शिक्षक थे और अनुशासित थे और बड़े योग्य शिक्षक थे, जिन्होंने बच्चों के प्रति त्याग किया है कि इनको कैसे सफल बनाया जाए, देश का नागरिक बनाया जाए, तो हम सोच रहे थे कि मैं भी पिता के समान एक शिक्षक बनूं, लेकिन ईश्वर हमसे शायद कुछ और ही कराना चाह रहा था। जब मैं नानी के यहां जाता था तो मैं बचपन में देखता था कि जब कोई मांगने वाला भिक्षु या कोई मनोरोगी हमारे यहां

0: आता था नानी के यहाँ, तो जैसे बच्चे शरारत करते ना उनके साथ, तो शरारत की, कभी भोजन दिया नहीं दिया, या उनके ऊपर पानी फेंक दिया, कंकड़ उनको टच करके भाग गए, कंकड़ मार दिए। तो हमारी नानी कहती थी कि उनके भी हृदय है, जान है, उनके उनके भी, वो भी एक मनुष्य हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें भोजन दें, उन्हें खाना दें और उन्हें कपड़े दें। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नानी थी तो निरक्षर, लेकिन एक बहुत ही अनुभव था उनके पास, उनके पास ज्ञान का भंडार था। तो उन्होंने हमें ये प्रेरणा शिक्षा दी कि इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। तो कह सकते हैं बेसिकली कि महान आत्मा के द्वारा एक महान प्रेरणा हमें जो मिली, चिरस्थाई प्रेरणा मिली, जो निरंतर 36 वर्षों से आज तक चली आ रही है।
1: सबसे पहले आपने क्या किया था, किस व्यक्ति को किस तरह से क्या देखा और कैसे उसके सुधार के लिए और उसके बेहतरी के लिए काम किया?
0: जैसे कि हमारे घर में कुछ लोग मांगने वाले आते थे, तो उनको भोजन कराना, या कोई इवेंट हुआ, कोई ओकेशन हुआ, फादर का जन्मदिन हुआ या कुछ हुआ, तो उनको घर से भोजन बनाकर इन लोगों के बीच में बांटना। तो अच्छा लगता था इनसे कभी बात करना, मिलना। फिर देखा कि इन लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, तो परिवार के लोग भी इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, समाज के लोग भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, साथ में सरकार भी इनका कोई उचित ध्यान नहीं करती थी। तो सबसे पहले तो हम इनकी कटिंग कराना, कपड़े बदलाना, भोजन कराना इत्यादि करते रहे। फिर जैसे मैंने LLV की, तो मैंने देखा कि इसमें एक एक्ट है, कानून है, कि इनको हम कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से इनको हम मानसिक आरोग्य शाला पहुंचा सकते हैं, वो भी पूर्णतः निशुल्क। तो वो हमने धीमे धीमे शुरुआत की। सबसे पहले एक सेरा नाम का मानसिक विक्षिप्त था, कहीं भी सांप खा ले, किसी को भी मारने दौड़ जाए, तो सर्वप्रथम आज से 28 वर्ष पहले हमने उसको मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर पहुंचाया था। अच्छा। वो स्वस्थ भी हो गया था।
1: मतलब ये कि किसी व्यक्ति को आपने वहां पहुंचाया और मेंटल हेल्थ सेंटर में, और वो ठीक हो गया?
0: हाँ, सभी ठीक हो जाते हैं। इसमें एक चीज और है, जैसे आपने प्रश्न किया जितने पहुंचाए वो क्या सब ठीक हो गए, तो इसमें क्या होता है, जैसे सर्दी खांसी बुखार होता है, वो पहले होता है, मतलब व्यक्ति स्वस्थ होता है, फिर यदि सर्दी खांसी बुखार हो गया तो इलाज से ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई मानसिक विक्षिप्त रहता है, पहले स्वस्थ था, किन्हीं कारणों मानसिक विक्षिप्त हो गया, तो उसको हम दवाइयों के माध्यम से ठीक करा सकते हैं। और कोई यदि MR है, MR बोले तो मेंटल रिटार्ड, मानसिक मंदता, तो उनको हम फिर संबंधित NGO में पहुंचाते हैं, क्योंकि जो मेंटल रिटार्ड पर्सन होते हैं उनका वो पैदाइशी होते हैं, तो उनको अपन सहायता कर सकते हो, उनको सरकारें पेंशन भी देती हैं, तो उनकी व्यवस्था भी करते हैं।
1: जी, अब तक कितने लोगों को अपने बेहतर दिशा की ओर पहुंचाने का काम किया है?
0: प्रत्येक दिन, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है हमारे लिए जो कि जहां पर हमें फोन ना आता हो कि भैया, आजकल तो प्रशासनिक अधिकारी हमें फोन करने लगे हैं कि सर इसका जो एक्ट है, कानून है, वो हमें बताएं। तो हमने एक PDF फाइल बना रखी है, तो जहां से जैसे भी वो फोन आता है, हम वहां जाके वो PDF फाइल दे देते कि एक्ट ये बोलता है, प्रोसीडिंग क्या है ये बता देते, कि एक परिवाद बनेगा, कथन कटेंगे, मेडिकल से मेडिकल कराएंगे, डॉक्टर से मेडिकल कराएंगे, तदुपरांत संबंधित व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में पेश करके संबंधित मानसिक आरोग्य शाला में पहुंचाया जा सकता है, एक चीज।
1: जी,
0: सेकंड चीज, यदि कोई मनोरोगी है, डिप्रेशन में है, या कोई और भी चीजें हैं, तो उनको हम बेहतर इलाज के लिए मार्गदर्शन देते हैं कि आप ऐसा कीजिए। अभी जो आपने प्रश्न किया, अभी तक हमने 2000 प्लस खूंखार मानसिक विक्षिप्त, जिन्होंने की हत्याएं की है, आगजनी की है, जिन्होंने अपने घर परिवार को किसी न किसी की हत्या कर दी, तो 2000 से अधिक मानसिक विक्षिप्तों को कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से मानसिक आरोग्य शाला पहुंचाया। आप विश्वास करेंगे, 2000 प्लस जितने भी थे, वो सभी स्वस्थ होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं।
1: जी,
0: वो अपना व अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं साथ में, लेकिन एक निर्देश भी देते हम कि इसकी जो इलाज करा के आई इसकी दवाइयां जब तक डॉक्टर ना कहे बंद ना करे। अधिकांशतः प्रायः देखा गया है कि जैसे ही इलाज करा के आते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं, फिर दवाइयां बंद।

0: कर देते हैं, तो दवाइयां कभी बंद ना करें जब तक डॉक्टर ना
1: कहे। आपको किस तरह की परेशानियों का विरोध का सामना करना पड़ा?
0: देखो ये तो स्वाभाविक है, जब कोई अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित है परेशानियां तो आती ही हैं। वो तो आपका दृढ़ संकल्प है कि आप उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो जब हम जाते हैं तो सबसे पहले तो वो जो मानसिक विक्षिप्त रहता है, जो फोन आया कि आप मिलिए उससे, तो जाते तो वैसे ही बिहेव करता है वो मेरे साथ भी, जैसे आम पब्लिक के साथ बिहेव करता है।
1: हिंसक हो सकता है?
0: हिंसक होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन जब धीमे धीमे हम उनके संपर्क में आते हैं, उनकी वस्तुएं खाने पीने के लिए देते हैं, वो हमारी बात समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, हम उनकी बात समझने का प्रयास कोशिश करते हैं, ये सिलसिला थोड़ा बढ़ता है, फिर वो हमारी बात मानते हैं, हम उनकी बात मानते हैं, और फिर हम ऐसे खूंखार मानसिक, तो यदि बेघर है, होमलेस है, तो संबंधित थाना प्रभारी को कहेंगे, संबंधित थाना प्रभारी भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता, कहने लगते हमारे पास और भी कार हैं, और क्या पुलिस के पास यही कार है, उन्हें हम कानून बताते हैं, है ना, फिर उन्हें ये लगता है कि जे क्यों इस सेवा को कर रहे हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं कि हमारी कोई एनजीओ नहीं है, फिर जैसी वो हमारे विषय में मालूम करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति
1: जेन्युइन है,
0: जेन्युइन है, निस्वार्थ भाव से सेवा कई वर्षों से करते आ रहे हैं, तब वो हमें कोऑपरेट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी जब हम ज्यादा परेशान करते हैं और तो वो क्या करते हैं, उस मानसिक विक्षिप्त को अपने क्षेत्र से किसी ट्रक में बैठाल कर आगे बढ़ा देते हैं, ऐसी क्रम चलता रहता है।
1: अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आप किसी भी मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को देखते हैं कि वो किसी बुरी स्थिति में है, तो आप उसे वहां से रेस्क्यू करते हैं और आप उसे सरकारी यूनिट में पहुंचाते हैं।
0: जी जी,
1: है ना, सुधार गृह में पहुंचाते हैं या
0: मानसिक आरोग्यशाला,
1: आरोग्यशाला जो होती है वहां पहुंचाते हैं, क्या वहां से सहयोग मिलता है? और क्या आपकी बात सुनकर कोई व्यक्ति इस तरह का प्रयास करे तो क्या वो सफल हो पाएगा?
0: क्यों नहीं सफल हो सकता भाई, सफल तो हो, जैसे हमें भी जब शुरू की थी आज से 36 वर्ष पहले तो प्रॉब्लम आई थी, लेकिन एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक मन में विश्वास होना चाहिए कि देखो यदि आप संघर्षों से टकराएंगे और लड़ेंगे तभी तो आप ऊंचाइयां छू पाएंगे।
1: जी जी बिल्कुल,
0: तभी आप हटके कोई कार्य करेंगे तभी तो आप ऊंचाइयां छू पाएंगे, अन्यथा आम जनता में तो सब वही रहता है, बगल से निकल जाते, उसको देखते रहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति हमारे जैसा कार्य करना चाहता है तो पहले तो हम उसका बहुत स्वागत करेंगे, लेकिन उसमें एक प्रेरणा कर ले कि हमें यह काम निस्वार्थ भाव से करना है,
1: लगे रहना पड़ेगा,
0: लगे रहना पड़ेगा, और बिना प्रतिफल के, बिना किसी आशा के यदि आप करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों आप भी सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए शिखर पर पहुंचेंगे। जो हमारी कार करने की पद्धति है, जैसे आपने पूछा, तो जैसे भी हमें कहीं मिलता है मानसिक विक्षिप्त, हम संबंधित थाने में जाकर उसके विषय में मिसिंग कंप्लेन देखते हैं कि कोई मिसिंग कंप्लेन तो नहीं है, फिर नहीं मिलती है तो एक पुलिस अधिकारी से परवाद बनवाते हैं, उन्हें कानून बताते हैं, फिर मेडिकल से मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल भी कराते हैं, कथन कटवाते हैं, फिर संबंधित थाना प्रभारी, इसमें कानून है, जैसे हम आपको यही बताना चाहते हैं कि 1912 में था द इंडियन लुनेसी एक्ट, उसमें जो मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती करने की जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, उसमें एसडीएम डिप्टी कलेक्टर को पावर था कि वो आदेशित कर देते थे, लेकिन देखा गया कि कुछ इसका मिसयूज हो रहा है, व्यक्ति झाड़ फूक करता है, राख से इलाज करता है, मंदिर मस्जिद पे जाता है, फिर नया एक्ट बना, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, वो भी बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें हर चीज की डेफिनेशन बताई गई कि मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है, डॉक्टर की डेफिनेशन क्या है, और रिसेप्शन ऑर्डर क्या है, कैसे परवाद बनेगा, किस धारा के अंतर्गत बनेगा, ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर क्या है, रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या है, और जिन बेघर हैं, जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, उनको कैसे आरोग्यशाला पहुंचाए, तो उसके लिए गार्जियनशिप कौन नियुक्त करेगा, कि गार्जियनशिप किसको मिलना चाहिए। तो इस एक्ट में एक चीज और हम बता दें, वर्तमान परिवेश में हमारे जो युवा हैं, आप देखते होंगे अखबारों में और माध्यम के, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे जो युवा हैं वो आत्महत्या की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, तो जो एक समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह भी है, तो इसके विषय में हम जरूर बताना चाहते हैं कि इस एक्ट में पहले

0: व्यक्ति यदि एक ही धारा थी हमारे संविधान में, हमारे कानून में एक ही धारा थी कि यदि आत्महत्या करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे एक वर्ष का कारावास होता था, दंड दिया जाता था, और यदि उसने अपराध कर लिया दंड, तो वो तो स्वर्गवासी हो गया, इस दुनिया ही में नहीं है। इस एक्ट में जो अभी नया एक्ट आ गया है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इस एक्ट में इस धारा को विलोपित किया गया है। इस एक्ट में एक और फायदा है, मतलब बताया गया है कि जो दिव्यांग हैं, जो पहले 7 प्रकार के थे, अब 21 प्रकार के किए गए हैं। साथ ही इनके लिए बीमा नहीं मिलता था, इनकी फोटो कोई भी छाप देता था, इनकी इनके दुर्व्यवहार करता था, इन्हें परेशान करता था, घर के लोग भी परेशान करते थे, उन्हें उनकी हिस्सेदारी नहीं देते थे, उनके परिवार में यदि कोई संकट आता था या कुछ भी होता था, परिवार का जो उनका हिस्सा था वो भी गबन कर जाते थे, ले जाते थे। तो अब ऐसे गार्जियनशिप बनाएंगे और ऐसे परिवारों के लिए इनके लिए बीमा का भी प्रावधान किया गया है, और यदि कोई इनसे दुर्व्यवहार करता है, कंट्रोवीन करता है, तो इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है इस एक्ट में।
1: जी,
0: वो सजा है कि पहली बार यदि कोई उल्लंघन करता है, कंट्रोवीन करता है, तो उसको 2 माह की सजा और ₹10,000 जुर्माना, या दोनों संयुक्त रूप से कर सकते हैं। फिर यदि दोबारा कंट्रोवीन होता है, उल्लंघन करते हैं, तो इसमें 2 वर्ष की सजा और 50,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है।
1: जी, आपने ये कानून पहलू तो बताए। दो बातें यहां जो है वो मैं आपसे करना चाहता हूं। एक तो ये है कि ये जो झाड़ फूंक और अंधविश्वास का प्रचलन है,
0: जी जी जी,
1: ये मानसिक रोग हों या बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियां हों, इन
0: जी
1: सब परिस्थितियों में
0: जी जी
1: लोग इनकी शरण में जाते हैं।
0: जी जी जी।
1: तो इस तरह के मामले आपने देखे हैं कि
0: हाँ,
1: किसी व्यक्ति में मानसिक विक्षिप्तता के लक्षण दिखे तो लोग इस तरह का अंधविश्वास अपनाते हैं, इससे मामला कितना बिगड़ता है, ये एक बात हुई। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी घटनाएं आपने इन 36 सालों में देखी हैं जिनमें से कुछ का यहां जिक्र किया जाए, तो एक के बाद एक इन दोनों बातों के जवाब दीजिए।
0: होता क्या था कि नार्कोटेक्स की दवाइयां थी, मनोचिकित्सक पूरे देश में कम थे, और व्यक्ति यदि मनोरोगी हो गया है, एक बात हम आपको और बताते हैं आपके माध्यम से कि हमारे क्षेत्र में तो ज्यादातर, वहां के क्षेत्रों में भी होगा, पढ़ते रहते अखबारों में, एक गांजा पीने से मैरिजुआना, गांजा पीने से हमारे बुंदेलखंड में काफी मानसिक विक्षेप मिलते हैं। गांजा यदि खाली पेट पिया जाए तो व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल के अंदर वो मानसिक विक्षेप की कगार पर आ जाएगा।
1: ओ,
0: मानसिक गांजा पीने से केवल, तो गांजा नहीं पीना चाहिए, नशा तो किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा शरीर दिया है। जब पहली बार हम तमाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो हमारा शरीर मना करता है। जैसे हम सिगरेट पीते हैं, ठसकी लगती है, तमाकू खाते उल्टी होती, चक्कर आते हैं, शराब पीते उल्टी होती है, तो भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, मना करता है। तो गांजा तो भूल के नहीं पीना चाहिए, गांजा पीने से व्यक्ति निश्चित ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, निश्चित ही एक न दिन मानसिक विक्षिप्त होगा। यदि उसकी डाइट अच्छी रही ना रही तो, डाइट अच्छी रही तो ठीक है, कुछ दिन बाद कुछ सफर कर जाएगा, 10 साल 5 साल, लेकिन गांजा पीने से बुंदेलखंड में बहुत मानसिक विक्षेप मिलते हैं। पहली चीज
1: जी,
0: होता यह है कि डॉक्टर मिलते नहीं है, दवाइयां नार्कोटेक्स की रहती हैं, डॉक्टर के पर्चे पे दवाइयां मिलती हैं, तो व्यक्ति जाए तो आखिर जाए कहां। सेकंड चीज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं मानसिक विक्षेप नहीं हूं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मनोरोगी हो रहे हैं आज के समय में, सबसे ज्यादा हमारे युवा हो रहे हैं, उसका मेन कारण है मोबाइल,
1: अच्छा,
0: सोशल मीडिया। इनके इनके बच्चों के ऊपर जब लाइक डिसलाइक इनके नहीं आते हैं तो इनके मानसिक बोझ बढ़ता है, और माता पिता भी इनके ऊपर बहुत कहते हैं कि देखो फलाने का बच्चा ये बन गया, ढिकाने का बच्चा ये बन गया, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो मानसिक बोझ हमारे बच्चों पर पड़ता है। और वो उसको सहन नहीं करते, तो बच्चे फिर गांजा पीने लगते हो, फिर वो आत्महत्या भी करते हैं। तो एक कारण। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया था कि जो इनको बताओ, एक्चुअली व्यक्ति जाए तो कहां जाए, वो तो वो फिर झाड़ फूक की ओर अग्रसर होता है। झाड़ फूक करने से क्या होता है कि हमारा शरीर बहुत अच्छा है, तो जब झाड़ फूक कोई व्यक्ति

0: करता है, तो अति विश्वास के कारण हमारे शरीर से ऐसे रसायनों का स्राव होता है जो कि हमें खुशी प्रदान करता है। सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, तो ये ब्रेन केमिकल है। और ये सब काय से बनते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन में होता है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, जब ब्रेन केमिकल कहलाते हैं। जब ये ब्रेन में जाते हैं तो हमें सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन मिलते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जब इन जगह पर जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, मजार, बाबा, ओझा के यहाँ राख लेके आते हैं, तो अति विश्वास के कांड कुछ समय के लिए अच्छे हो जाते
1: हैं। है, जो झूठा असर हो,
0: हाँ, कुछ समय के लिए
1: असर हो सकता है,
0: कुछ समय के लिए, लेकिन वो फिर फिक्री अपनी वही अपना लेते हैं तो रहता है। लेकिन हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं, तो पहले होता क्या था कि जो पहले WHO के जो आंकड़े बताते हैं 2019 के अनुसार कि पहले 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता था, अब प्रति सेकंड हो गया है 2020 में। और एक सर्वे कराया था निमंस ने बेंगलोर में, उसने देखा था 10,000 लोगों पर, तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन पे भी कराया था, तो 2,443 लोग मनोरोगी पाए गए। तो कोई भी व्यक्ति मनोरोगी होगा उसको कहते हैं CMD, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। हम मानते ही नहीं है कि हम मनोरोगी हो गए हैं। क्यों नहीं मानते? हमारे घर परिवार में सभ्य समाज के लोग नहीं आएंगे, कहेंगे अरे वो तो मनोरोगियों का परिवार है, हमारे यहाँ शादी विवाह नहीं होगी, कोई हमारे परिवार में नहीं आएंगे, भिन्न भिन्न कारण हो सके, इसलिए कोई बताता नहीं है कि हम मनोरोगी हो गए हैं। और हमें मालूम भी नहीं चलता, इसके कोई टेस्ट भी नहीं होते कि कोई ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, फलाने टेस्ट हो। इसमें तो बस ऐसा ज्ञात किया जाता है कि व्यक्ति को यदि 15 दिन से अधिक नींद ना आना, भूख नहीं लगना, अजीब सा लगना और ऐसा लगना, बुरा बुरा लगना, बुरे बुरे ख्याल आना है, तो अजीब मतलब, तो वो समझो कि CMD की ओर अग्रसर है, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर की ओर अग्रसर है।
1: ऐसी परिस्थिति में ओझा या झाड़फूंक वाली जगहों पर जाने की बजाय मेडिकल हेल्प लेनी,
0: मेडिकल हेल्प उससे ठीक भी। जैसे हमारे पास उदाहरण है कि हमने 2000 से ऊपर पहुंचाया, वो स्वस्थ होकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ गए हैं
1: जी। अब मुझे कुछ ऐसी घटनाएं बताइए जो आपके जीवन की बड़ी यादगार घटनाएं हैं और जिनमें बदलाव के संकेत हैं।
0: एक तो हम अपना बुरा अनुभव बता दें कि हम एक मानसिक विक्षिप्त को, जो कि BSc पास था और सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाता भी था, वो किसी गांजा पीने से हो गया था मानसिक विक्षिप्त। हाँ, तो उसको बांधे थे, जंजीरों से बांधे थे और उसने आगजनी भी की थी और बहुत अच्छा हष्टपुष्ट लड़का था। तो न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया, थानेदार से भी निवेदन किया, पहुंचाया, तो थाने न्यायाधीश महोदय ने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी, SDM करेंगे। हमने उनको कानून बताया तो उन्होंने कहा इसको बांधे क्यों है? हमने कहा जी हिंसक है, अभी किसी को मार देगा, और एक दो इसके ऊपर 5 अपराध भी दर्ज हैं संबंधित थाने में, इसलिए इसको बांधे हुए हैं। तो उन्होंने एक आदेश दिया कि लड़के को, पिताजी को, जो इनके खास हम खास बने हैं वकील साहब संजय शर्मा, इनको भी अरेस्ट कर लिया जाए 342 में। मौखिक आदेश दिया था, लेकिन फिलहाल उन्हें भी अनुभव हुआ कि नहीं जी मानसिक विक्षिप्त थे, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, सब दिखाई। तो दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं,
1: आपको गिरफ्तार कर लिया गया था?
0: नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मौखिक आदेश दिया था, क्यों आप इसको बांधे हुए हैं? किसी अच्छे पुरुष को आपको बांधे रखना एक कानूनी अपराध है
1: जी,
0: और जो बांधे गए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन फिर उन्होंने उसी मानसिक विक्षिप्त को मानसिक आरोग्यशाला में पहुंचाया, वो स्वस्थ भी हो गया और समाज की मुख्यधारा, फिर इस स्कूल में पढ़ाने भी लगा था वो।
1: वाह।
0: फिर एक और उदाहरण दे रहे हैं कि एक मानसिक विक्षिप्त नहीं था, मनोरोगी था वो, तो उसको सुनाई भी नहीं देता था, बोल नहीं पाता था। तो उसके बगल में नया नया कंप्यूटर आया और जैसे कि बाहर से, दिल्ली से, कहीं से भी कोई रिजल्ट ओपन होता था तो वो उस गांव में मार्कशीट निकाल देता था, अंक सूची निकाल देता था। तो उसको ऐसा भ्रम हुआ कि हमारा पड़ोसी, जो हम खाते पीते हैं, हमारा खून और हमारा भोजन निकाल लेता है।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, तो वो दुबला हो गया था पूरी तरह। वो मेरे पास आया, बोला भैया वो बगल वाला पड़ोसी के पास कंप्यूटर आया है, प्रिंटर आया है, जिस पे वो हमारा खून और खून निकाल लेता और भोजन निकाल लेता। हमने कैसे? बोले जिस प्रकार से दिल्ली में कोई रिजल्ट ओपन हुआ, अंक सूची वो अपने घर से निकाल देता है। तो इसी प्रकार से हमारा ब्लड और खून निकाल लेता और हमारा भोजन निकाल लेता।
1: भयंकर अंधविश्वास।
0: हाँ, भयंकर। तो हमने कहा कैसे कैसे उसको मना किया जाए? तो उसने कहा हमसे कि यदि आप उसको मना कर दें, हमने वो हमारी बात नहीं मानेगा। तो हमने पुलिस वालों को बताया, क्योंकि वो ना पढ़ा लिखा था, 12वीं पास था वो, और कंपोजिंग करता था प्रेस में।
1: ओके।
0: हाँ, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो साइको पेशेंट था
1: जी।
0: फिर उसको हमने जब समझाया, बताया, तो पुलिस वालों से कहा, पुलिस वालों से निवेदन किया कि इसको समझा देना। तो उसने लिख के दिया कि हम इनका

0: भोजन हम नहीं निकालेंगे ना खून, वो विगत एक हफ्ते में स्वस्थ हो गया।
1: मतलब ये सोची कि ये नौटंकी नाटक एक तरह का रचना पड़ा कि भाई एक व्यक्ति की बेहतरी के लिए इस तरह का कुछ।
0: एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला था जैविक घंटी पर।
1: जी,
0: आप जैसा मन में सोचेंगे, जैसे विचार ले आएंगे, सामने आपको आकृति भी आ जाएगी।
1: ये मन का खेल है
0: जी। नोबेल पुरस्कार मिला गया है 2017 में जैविक घंटी जियोलॉजिकल वेल पर, मतलब साइंस है जी। तो हमारे कहने के तात पर आप जैसे मन में विचार ले आएंगे, आप यदि सोचेंगे हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, रात्रि में अंधेरे में जा रहे हो, आपने सोचा कि कोई मुझे चुड़ैल मिल जाएगी, भूत मिल जाएगा, एक आपके सामने परिकल्पना जो आप इमेजिंग आप जो मस्तिष्क में बनाए वो सामने आ जाएगी आपके
1: जी,
0: वो मिल जाएगा, तो आप विश्वास हो जाएंगे, डर जाएंगे और वहीं गिर पड़ेंगे।
1: इसलिए जीवन जो है वो थोड़ा तार्किक और वैज्ञानिक होना जरूरी है और अंधविश्वासों से दूर जाना जरूरी है। संजय जी, एक बात जो आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बात है उसकी ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति महोदया से जिस दिन आपको ये पुरस्कार मिला,
0: जी जी जी,
1: वो पल और जिस दिन इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी,
0: जी जी,
1: वो पल कैसी कैफियत थी आपकी?
0: देखिए सर, ये तो एक पुरस्कार है, प्रोत्साहन है, किसी ने हमारे कार्यों को रिकॉग्निशन की दिया है, एक हमें मतलब एक प्रकार से अच्छा लगता है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी हमें तब होती है कि जब कई कई वर्षों से जिनका भोजन समाप्त हो जाता है, वो अपनी नहीं कहना चाहिए कि अपनी मल खा जाते हैं, लैटिन खा जाते हैं, वो यदि स्वस्थ होके आ जाते हैं, उससे ज्यादा खुशी का पल कोई नहीं होता है मेरे जीवन में।
1: जी,
0: मैं ईश्वर नहीं हूं, भगवान नहीं हूं मैं, लेकिन शायद जो मृत्यु की कगार पे था उसको हमने एक नया जीवन दे दिया, इससे बड़ा खुशी का पल हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है।
1: मैं समझता हूं आपकी ये भावना कितनी बड़ी है कि पुरस्कार से बेहतर जो आपको लगता है वो ये है कि आप समाज बदले और जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं उनकी दशा बदले।
0: जी, जी।
1: सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि समाज में बहुत सारी भ्रांतियां और गलत धारणाएं प्रचलित हैं जिनकी वजह से मानसिक विक्षिप्त लोगों को स्वीकार नहीं किया जाता, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आपका एक लंबा अनुभव है, आप उनके साथ काम कर चुके हैं, उनकी हिंसा झेली होगी, उनको बेहतर दिशा में ले गए। आप विविध भारती के हजारों लाखों करोड़ों सुनने वाले लोगों से अपने अनुभव की क्या बात कहना चाहते हैं कि हमें कैसे अपनी सोच और बर्ताव को बदलना चाहिए?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहली चीज तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हे श्रोता, आप लोग जैसे सुबह जब हम उठते हैं, नहाते धोते कपड़े बदलते हैं, ब्रश करते, मंजन करते हैं, वह क्रिया सभी करते हैं, आंतरिक क्रिया के लिए कुछ नहीं करते। हमें कपड़े बदलना है, सब कुछ करना है, लेकिन मन की शांति के लिए हमने क्या किया? एक छोटा सा उदाहरण देते हम, जिस प्रकार से कंप्यूटर हार्डवेयर है उसमें जितने अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं उतने अच्छे अच्छे उसके रिजल्ट आते हैं, जितने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर होंगे उतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसी प्रकार से जे हमारा जो शरीर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के समान है, हम जितने अच्छे अच्छे सुविचार डालेंगे, पॉजिटिव विचार डालेंगे, उतने अच्छे हमारे रिजल्ट आएंगे, कार में हमारा प्रभाव दिखेगा, हमारे रिजल्ट आएंगे। साथ ही मेडिटेशन करें, नशा ना करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें। नशा तब करता है व्यक्ति जब हम किसी गलत काम करते हैं तो उसको छिपाने के लिए, जब हम तनावग्रस्त स्ट्रेस करते हैं तब नशा करने लगते हैं। तो व्यक्ति चीज तो ऐसे कार्य ना करें कि हमें तनाव मिले। दूसरी चीज, मेडिटेशन करें, योग करें, व्यायाम करें, उतना करें जितनी हमारी मानसिक

0: कहीं ना
1: जी
0: कहीं बदलाव की शुरुआत होगी
1: जी जी
0: और लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपसे मार्गदर्शन लेंगे और हम उम्मीद करें कि मानसिक विक्षिप्तों के साथ बेहतर व्यवहार होगा, उन्हें बेहतर जीवन और बेहतर दिशा मिलेगी। बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इतनी सारी जानकारियां देने के लिए,
1: मुझे यहाँ अवसर देने के लिए, मेरी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
0: शुक्रिया। मैटिनी शो कार्यक्रम में अभी आपने सुनी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने।

0: कुछ दिल ने कहा,
1: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

परवीन सुल्ताना की आवाज थी कुदरत फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था। संगीत आर डी बर्मन का, विविध भारती पर चल रही है यादों की महफिल।

0: एका डॉक्टर शकुंतला भरणे
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: यदु की महफिल कार्यक्रम में अब चश्मे बद्दूर फिल्म का गीत येसुदास और हेमंती शुक्ला।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और इस फेसबुक पेज पर जो इबारत होती है उसके जरिए हमारे श्रोताओं को एक चैलेंज मिलता है। वो चैलेंज ये होता है कि कुछ गाने छिपे होते हैं इस इबारत में, जिसके जरिए आपको पहचानना पड़ता है कि आज के कार्यक्रम का ताना बाना आखिर क्या है। तो चलिए आज की इबारत हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। दो लोगों की बातचीत है ये, चलो गानों में बात करते हैं। मतलब, अरे मैं एक लाइन बोलूंगा जो किसी गाने की होगी, फिर तुम बोलना, लाइन बीच की भी हो सकती है। ठीक है, देखो मुश्किल लाइनें होंगी, चैलेंज मंजूर, शुरू करो। क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं। नारी दीवानी हूं पीड़ा की रानी, मेरे ख्वाबों की झरोखों को सजाने वाली। किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। नए फूल फिर डगर में खिलेंगे, बहते चले हम मस्ती के धारों में। हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इसका कोई पेंच भी ढीला है। हम न बोलेंगे कभी, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझो, आया ना मजा, तुम्हें तो बड़े गाने याद हैं। अगली बार फिर खेलेंगे ये खेल। ये है आज की इबारत, और बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं, और आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं इस गाने के साथ। और आप भी बताइए कि क्या गानों के जरिए आप भी करते हैं संवाद। ये भी बताइए कि इस गाने को किस शायर ने लिखा है।

एक श्रोता ये लिखती हैं कि यूनुसी, ये संवाद वाली इबारत तो जैसे अब आपकी पहचान हो गई है। हम भी कभी कभी करते हैं गीतों के माध्यम से बातें और बड़ा ही मजा आता है। वहीं दूसरी तरफ एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भाई आपसे किसी सारगर्भित गद्यांश की उम्मीद रहती है और गानों की आधी अधूरी पंक्तियां जोड़कर आप इबारत न दिया करें। तो भाई हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो पिछले कुछ हफ्तों से जब भी सुरीला सफर कार्यक्रम में आपका ये दोस्त आता है, दो लोगों की बातचीत को गानों में पिरोता है और उसके जरिए एक इबारत तैयार होती है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक तरीका नहीं है तो बाकायदा गद्यांश लिखा जा सकता है जिसमें कोई शब्द होंगे और उन शब्दों पर गाने होंगे। पर जिस तरह से आज बहुत ही मुश्किल पंक्तियों को मैंने पिरो दिया है गानों में, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें गाने खोजने में बहुत मजा आया और बहुत देर लगी गाने खोजने में? कई ऐसे लोग हैं मैंने देखा कि जिनके गानों को लेकर जवाब बड़े गलत आए हैं। मतलब ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ पंक्तियों को थोड़ा सा गलत पहचान लिया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा बहुत अच्छे से पहचाना। कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना था, कुछ रोता है जिन्होंने से बोला है, गाना है गुलजार साहब का जो कि नहीं है। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और ये जो गाना है ये किसी के आने से चेहरे पर चमक जाने वाली खुशी का गाना है। इस वीकेंड आपके घर कौन आ रहा है, क्या आपका चेहरा खिल उठे? आपको अपने घर किसके आने का इंतजार है?

क्या बात है। अभी अभी एक कमेंट ही आया है कि वक्त के इस गाने से चेहरे पर खुशी छा जाती है, क्योंकि इस गाने में बजा पियानो इनॉक डैनियल साहब का बजाया हुआ है। इत्तेफाक की बात यह है कि बीते दिनों जब मैं पुणे गया तो इनॉक डैनियल साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी। बहरहाल एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इस गाने में साधना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो लिख रही है कि अभी तो राखी आ रही है और अपनी बेटी का इंतजार है, वो अपनी नन्ही परी के साथ आने वाली है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि राखी है इसलिए मैं अपनी बहनों और बेटी का इंतजार कर रहा हूं। एक श्रोता को जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का इंतजार है, तो इसके अलावा एक और श्रोता है जिनके ससुराल वाले आ रहे हैं और वो त्रिकोणीय फल बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो आज कहीं जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनके घर कुछ लोग आ रहे हैं और उन्हें उनके आने से खुशी है। एक श्रोता है जिन्हें कुछ पत्रिकाओं की ऑनलाइन उन्होंने उनके ऑर्डर दिए थे तो उनका इंतजार है, यानी आंखों में चमक तब आएगी जब वो मैगजीन्स आ जाएंगी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रही है कि मैं आलसी होना चाहती थी लेकिन आज कोशिश किया और पहली हल कर ली। आज की इबारत कठिन है, यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है। कठिन आज की इबारत बाकायदा है और बहुत ज्यादा कठिन बनाई गई है। चलिए कठिनाई से आगे बढ़ते हैं और दूसरी कठिनाई की तरफ बढ़ते हैं। एक कठिनाई से दूसरी कठिनाई की तरफ। आप में से जो लोग ईमानदारी से बताना चाहते हैं बताएं कि आज कौन है जो उनसे रूठा हुआ है। पढ़ने जैसे संदेश होंगे तो हम यहां पढ़कर बताएंगे, क्या पता ये संदेश सुनकर रूठा हुआ कोई मान जाए। दूसरी चीज, रूठे हुए को मनाने का आपका फेवरेट तरीका क्या है।

भाई कितना मजा आया ये पढ़ के कि एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे साथ रूठने वाली तो हमारी नवासी है, एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम में मान जाती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि काश मैं इधर बात कर सकती लेकिन अपनी सहेली के साथ अस्पताल में हूं, मतलब किसी मरीज को देखने के लिए गई हुई है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कान पकड़ो और कुछ अपनी शक्ल ऐसी बनाओ कि सामने वाले को लगे कि मस्का मारा जा रहा है। भाई बड़े अनुभवी हैं आप, बड़ी स्टाइल से आपने बताया है, एकदम तस्वीर आंखों के आगे खींच गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि मेरी श्रीमती जब मुझसे रूठ जाती है तब मैं उन्हें अदरक इलायची वाली चाय बनाकर खुद अपने हाथों से पिलाता हूं। देखिए भाई सीखिए कुछ। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने रूठने मनाने के कुछ नुस्खे लिखे हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा भी होगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर आप में से किसी श्रोता को रूठने मनाने वाले जो नुस्खे हैं अभी भी पता हैं और उसमें से कुछ नुस्खे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं तो जरा लिख दीजिए, हम जरूर शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई मुझसे रूठे ना और अगर गलती से कोई रूठ लेता है तो मैं माफी मांग लेता हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है, इन्होंने बड़ा शॉर्टकट मारा है, लिखते हैं कि अब तो बहुत ईजी है, रूठने वाले को मनाने के लिए व्हाट्सअप ऑन करो, फ्लावर्स केक और सॉरी सेंड कर दो। भाई अगर इतने आसानी से लोग मान जाएं तो फिर बात ही क्या है, व्हाट्सएप पर नकली फ्लावर्स, नकली केक, नकली सॉरी, क्या इससे कोई मानता है। चलिए अब यह है कि एक श्रोता जो है उन्हें शायरी सूझी, उन्होंने लिखा, रूठना तुम्हारा भी अजीब मौसम है, तुम चुप हो तो कमरे में रखी चीजें भी जैसे धीरे धीरे बोलने लगती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि रूठते तो हम भी हैं पर एक बात हमें हमारी अच्छी लगती है कि हम मान भी जाते हैं, ज्यादा देर तक हम रूठे नहीं रह सकते, ये भी एक मजेदार चीज है। तो आज के इस कार्यक्रम का रास्ता जो है वो रूठने मनाने की तरफ मुड़ गया है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक उम्र के बाद कोई किसी को मनाता नहीं है, ये भी अनुभव की बात है। फिर एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारी रूठने की उम्र पार हो चुकी है, अब तो सिर्फ समझौते में गुजर रही है। और इसके अलावा कई श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत कठिन है लेकिन इस इबारत में जो बातचीत का अंदाज है वो पसंद आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और अब चलते हैं भीगने की तरफ। इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप, ये जरूर बताइएगा कि इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम रेनकोट या छतरी लेकर नहीं निकले तब जरूर ऊपर वाला टॉर्च लगा के देख लेता है और आपके ऊपर बारिश करवा देता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि मौका देखकर बारिश ने आपके ऊपर लगाया हो चौका?

0: साथ में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: इस बारिश में सबसे ज्यादा भीगने का मजा आप में से किसने लिया है ये जरूर बताइए।
0: रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।

भाई, हमने चाहा था कि आप में से बहुत सारे लोग भीगने के अपने किस्से बताएं, तो बड़ा मजा आए। एक श्रोता है, लिख रहे हैं कि फिलिस्तीन में तो पिछले 7 दिनों में खूब बारिश हुई और काम ही ऐसा है कि बाइक में चाहे रेनकोट भी पहनना पड़ता है, तब भी सारा बदन पानी से तर हो जाता है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगना भी बड़ा मजेदार अनुभव है। पहली बूंद चेहरे पर पड़ती है तो लगता है आसमान ने चुपके से छेड़ दिया, और फिर बाल, कपड़े, जूते सब अपनी अपनी शिकायत लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन मन है कि बचपन की तरफ लौटना चाहता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि मुझे भीगना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे भीगने वाले गीत पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता है, कहते हैं कि जैसे ही घर से निकले तो बारिश ने भिगो दिया, जब तक गाड़ी तक पहुंचे तब तक भीग चुके थे। इसके अलावा एक और श्रोता है, अचानक बारिश में भीगने का ज्यादा अनुभव तो नहीं, पर बारिश के मौसम में धूप खिली हो और छत पर कपड़े सुखाने डालें तो बादल जैसे भागे दौड़े चले आते हैं और हम कितना भी भाग कर जाएं, सूखे हुए कपड़ों को गीले होने से बचा नहीं पाते। ये मजेदार बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि

बरसात में खेतों की मेड़ों पर भीगते भीगते मजा आता है। बहरहाल खेतों पर छाता लेकर श्रीमती जी गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हों तो बात ही क्या है। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि कहीं बाइक चलाता हूं तो भीग जाता हूं अक्सर। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि धर्मशाला ओवरब्रिज में ड्यूटी जाते समय अचानक बारिश होने लगी और मैं भीग गया। घर वापस गया, कपड़े बदले, रेनकोट पहना और उसके बाद वापस काम पर गया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, भात लावणी यानी चावल की रोपाई देखने नसरापुर गए थे, तब बारिश में बहुत ज्यादा भीगे थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अगर मेरी वाइफ रूठ जाती है तो मैं सॉरी कहता हूं और जादू की झप्पी देता हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा वायरल फीवर फैला हुआ है आजकल, तो इसलिए भीगने से हम बचते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में तो इतनी बारिश ही नहीं हुई कि हम भीग जाएं। और इसके अलावा इतनी सारी बातें लोगों ने बारिश के बारे में की है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे यहां सीजन की बारिश कम होती है लेकिन जब बारिश होती है तो हम अपने टेरेस पर चले जाते हैं और भीगते हैं। बारिश की इतनी सारी बातें, कोई तो ऐसा होगा जो इस वक्त कार्यक्रम सुनते हुए भी बारिश का मजा ले रहा होगा, भीग रहा होगा। ये सच है कि वायरल फीवर का डर रहता है लेकिन ये भी होता है कि बारिश हुई और लोग निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। आपके शहर के आसपास ऐसी कौन सी जगह हैं जहां बारिश में मनाया जा सकता है पिकनिक, जहां लोगों की भीड़ आती है बारिश के मजे लेने के लिए।

भाई इतनी जल्दी गाना खत्म हो गया। जो अच्छे गाने होते हैं उनके खत्म होने पर यही लगता है अरे ये गाना खत्म हो गया। एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारा सबसे नजदीकी शहर अयोध्या है जहां राम की पौड़ी पर बारह महीने नहाते भीगते पिकनिक का मजा लीजिए, पुण्य कमाइए। एक और श्रोता है जो अपने जलंधर शहर के आसपास के घूमने के इलाकों के बारे में बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहां तो नर्मदे जी काफी ऊपर तक आ चुकी हैं और शासन ने मना किया उसके बावजूद लोग पुल पार कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि बनारस में बारिश के समय तीन जगहों पर सब लोग पिकनिक करते हैं, सबसे पहले सारनाथ, फिर नमो घाट और फिर बनारस का अस्सी, फिर क्या मजा है, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आप भोपाल आ जाइए, कोलार डैम चलते हैं, जंगल में चलते हैं, पिकनिक मनाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बीते तीन महीनों से हम पुणे में हैं, लोनावाला, तमहिणी घाट, अनेकों झरने और इस बार तो इंद्रदेव पूना पर बहुत ज्यादा मेहरबान हैं। और जहां तक बारिश में भीगने की बात है तो हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है शकील आजमी, वो कहते हैं खुद को इतना मत बचाया कर, खुद को इतना मत बचाया कर, बारिशें आए तो भीग जाया कर। क्या समझे आप। एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि बारिश में भीगना तो होता है पर कभी कभी आंसू भी भिगो देते हैं, जज्बाती बात इन्होंने लिखी है। एक श्रोता लंदन में है जो बारिश का इंतजार कर रही हैं और कहती हैं कि इतनी गर्मी कि बगीचे की घास तक सूख गई है। एक और श्रोता है जो इंदौर में है, लिखती हैं कि मांडू बहुत आसपास है और वहां लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि मैं और मेरे पतिदेव जब भोपाल में मिलते थे तो बड़े तालाब के किनारे हाथों में गर्मा गर्म भुट्टा और फिर भीगने का मजा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे शहर के आसपास करहांडला का जंगल है और ताडोबा है, पिकनिक मनाने के लिए बड़ी सुंदर जगह है। तो इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि किस तरह से उन्हें भीगने में मजा आता है और कैसे उनके घर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां बारिश के दिनों में मनाया जा सकता है पिकनिक। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो सागर शहर में पिकनिक मनाने की जगहों के बारे में लिख रही हैं। एक श्रोता है जो गोरखपुर में हैं और लिखते हैं कि रामगढ़ ताल गोरखपुर में बारिश में घूमने का बहुत ज्यादा मजा आता है, बिल्कुल अब तो वहां जो चलने के लिए जगह बन गई है वो भी बड़ी सुंदर है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं जयपुर में आमेर, जलमहल, नाहरगढ़, जयगढ़, क्या बात है। तो भैया सारे देश की जो बारिश की शानदार जगह है उनके बारे में हमें पता चल गया कि कहां कहां कैसे कैसे पिकनिक मनाया जा सकता है। खंडवा के पास हनुमंतिया टापू है, बैक वाटर का बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट, वहां भी बहुत मजा आता है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि 5 और 6 जुलाई को बहुत बारिश हुई और हम लोग मारवे बीच चले गए, बिल्डिंग की पूरी टोली गई थी पर भीगने नहीं दिया गया क्योंकि रेड अलर्ट लगा था। बिल्कुल समंदर जब चढ़ा हुआ हो तो वहां नहीं जाना चाहिए, बारिश में दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। चलिए आज सुबह से आपके होठों पर कौन सा गाना तैर रहा है, रंगीला रे, क्या ये गाना इस गाने की गीतकार कौन है ये आपको है बताना। और हाँ ये भी बताइए कि आपने सबसे अभी कौन सी फिल्म देखी, नई या पुरानी, एकदम अभी।

भाई बड़ी मजेदार बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अलग अलग फिल्में देखी हैं, और ये जो सवाल है ना कि अभी आपकी देखी हुई ताजा फिल्म कौन सी है। ताजा फिल्म का मतलब ये है कि व्हाट फिल्म हैव यू सीन वेरी रिसेंटली, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। तो कितनी मजेदार फिल्मों का इंद्रधनुष सज गया। बिल्कुल ताजा रिलीज हुई फिल्मों में से भी कुछ देखी हैं। अब जैसे एक श्रोता है जिन्होंने अपना देश देखी है, एक और श्रोता है जिन्होंने पुरानी वाली खामोशी देखी है, यानी वो खामोशी जिसमें गाना है हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू या तुम पुकार लो। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने दोस्ती देखी है, वाह वाह वाह, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत वाली दोस्ती। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बटवारा 2 देखी है और आवरापन 2 या 3 जो भी है वो देखी है। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने टैक्सी नंबर 9211 उनकी देखी हुई आखिरी फिल्म है। एक श्रोता है जिन्होंने परख फिल्म देखी है और उनके होठों पर सजा हुआ है गाना मिला है किसी का झुमका, वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात है। इसके अलावा आज का अर्जुन फिल्म कोई श्रोता है जो देख रही थी और लाइट चली गई। और इसके अलावा दीवाना मस्ताना कोई देख रहा है, कोई देख रहा है हम साथ साथ हैं, दो आंखें बरा हाथ, साहब बीवी और गुलाम, और इसके अलावा मैं वापस आऊंगा, और इसके अलावा देखिए मेरे महबूब, ओहो हो नमकीन, गुलजार साहब की फिल्में भी कितने सारे लोग देख रहे हैं, और इसके अलावा भागम भाग, जंगल और कुदरत। देखिए सिर्फ नाम अगर पढ़ें तो कितने सारे लोग क्या क्या फिल्में देख रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक बार लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, सोचा था रास्ते में बारिश होगी, गाने बजेंगे, मौसम रोमांटिक होगा, बारिश हुई, गाने बजे पर रोमांस की जगह पेट ने आवाज लगाई, पहले कुछ खाने का इंतजाम करो फिर आगे बढ़ना, आखिरकार मंजिल से पहले एक ढाबा मिल गया तो समझ में आया कि कुछ सफर पेट के रास्ते भी तय किए जाते हैं। मजाक की बात लेकिन दिलचस्प। और इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अलग अलग तरह की फिल्में देख रहे हैं, जैसे

एक श्रोता है जिन्होंने स्पाइडरमैन देखी है, उसके अलावा देखिए कितनी फिल्में हैं भाई। आराधना कोई देख रहा है, कोई गाइड देख रहा है। गाइड से एक चीज याद आ गई, आज गाइड फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति का जन्मदिन है। मार्को की भूमिका निभाई थी, उनकी याद का दिन आज है। कौन है वो कलाकार ये बताइएगा। योगेश के बोल आ रहे हैं अब, जाहिर है कि सवाल ये तो नहीं होगा, इस गाने के संगीतकार बताइए।

इस गाने के जरिए योगेश जी बहुत बहुत बहुत याद आया। आपके इस दोस्त को उनके साथ बहुत वक्त बिताने का मौका मिला है और एक बेमिसाल इंसान, सादा लेकिन कितने गहरे गीतकार। कभी उनके बारे में बातें की जाएंगी। एक श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि गाइड के मार्को यानी किशोर साहू जी, उनकी याद का दिन है। जी हाँ, किशोर साहू उनकी याद का दिन आज 22 अगस्त 1980 को उनका निधन हुआ था। और किशोर साहू मध्य प्रदेश के राजनांदगांव के रहने वाले थे और वहां से मुंबई आए और एक्टिंग की दुनिया में तो नाम कमाया, लेकिन वो एक निर्देशक भी थे और फिल्म लेखक भी थे। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने कुछ फिल्में लिखी और इसके अलावा कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है। क्या आपको पता है कि किशोर साहू की निर्देशित मशहूर फिल्में कौन सी हैं? एक फिल्म मैं बताता हूं, बाकी आप बताइएगा। हरे कांच की चूड़ियां किशोर साहू के निर्देशन वाली फिल्म थी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि मायूसी में गाने सुबह पर आते हैं, बड़ी बड़ी सुनी सुनी सी है जिंदगी, किसका रास्ता देखें, जिंदगी देने वाले सुन। एक श्रोता है जो कहते हैं अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, और इसके अलावा कहानियां सुनाती है पवन नाती जाती, ये एक श्रोता को बहुत ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो जैसे गानों का रिवीजन हो रहा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इंदौर में एक पुराना सिनेमा घर है मिल्की वे, जिसकी छत पतरे की थी और बारिश आने पर अलग ही पार्श्व संगीत बजता था। अब मुझे तो जावेद साहब के बोल याद आ गए, बजता है जल तरंग टीम की छत पे यूं। शायद इसी तरह के किसी एहसास के लिए उन्होंने लिखा होगा, बजता है जल तरंग टीम की छत पे यूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि किशोर कुमार की मखमली आवाज, योगेश की दार्शनिक बोल, राजेश रोशन का ये संगीत, ये गाना अपने आप में अनमोल है। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे श्रोता अभी भी किशोर साहू को याद कर रहे हैं, मार्को जिनकी याद का दिन आज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अनमोल गाने की तरफ बढ़ते हैं जो एक बहुत नाजुक से एहसास को बयां करता है। सवाल ये है कि इस गाने को किसने लिखा?

आलम रूही ने लिखा है जो गलत जवाब है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई ये गाना जो है ये कैफ भोपाली का लिखा गाना है और ये सही जवाब है। कैफ भोपाली एक बहुत ही नामी शायर, अगर आप मुशायरों के शौकीन रहे हैं तो वो ये गजल जो है बहुत तरन्नुम में सुनाया करते थे। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, और तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, और आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक समाना लगता है। ये कैफ भोपाली बहुत ही मशहूर वयोवृद्ध शायर भोपाल के, और उन्होंने ये गाना लिखा था, बहुत ही मशहूर गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, एक गुजराती कमेंट है जिसे मैं ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो मुझे मिल गया। वो जिस तरह से लिखा है मैं अगर ये लिपि पढ़ने की कोशिश करूं तो लिख रहे हैं कि मुझे तो उदास गाने बहुत ज्यादा पसंद हैं, आए तुम याद मुझे जब जब बहार आई, इस तरह के गाने पसंद हैं। देखिए मैंने गुजराती लिपि भी पढ़ ली। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज की तेज प्रश्नावली जो है और दिलकश गाने हैं, शुक्रिया। और इसके अलावा चिलमन का अंदाज, आनंद बख्शी ने भी चिलमन पर एक गाना लिखा है, सही पहचाना है आपने, उस गाने की बाद में करेंगे। इसके अलावा मन्ना डे का भी एक चिलमन वाला गाना है, अगर आपको याद हो तो जिक्र कीजिएगा। यहां पर एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि धुएं की लकीर का एक गाना लोकप्रिय हुआ था, तेरी झील सी गहरी आंखों में कुछ देखा है। एक श्रोता है जिन्होंने मुझे करेक्ट किया है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हम पुराने जमाने के लोग हो गए, उस जमाने में राजनांदगांव मध्य प्रदेश में हुआ करता था, आपने सुधार किया, शुक्रिया राजनांदगांव छत्तीसगढ़। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता है, जरा सामने तो छलिए उनके अकेलेपन का गाना है। इसके अलावा कुछ और श्रोता है जिन्हें उदास गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से कोशिश ये कर रहा हूं कि देखिए, काली घटा, गृहस्थी, दिल अपना और प्रीत पराई जैसी फिल्में किशोर साहू ने निर्देशित की। दिल अपना और प्रीत पराई, मुझे क्यों लग रहा है कि दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित, यस दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित फिल्म है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा शुक्रिया इन तमाम जवाबों के लिए। अगला गाना आ रहा है और ये बताइएगा कि फिल्म प्यासा आपने कितनी बार देखी है।

एक श्रोता लिखती हैं कि प्यासा फिल्म बार बार देखी है फिर भी मन में प्यास रह जाती है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोता हैं। एक श्रोता ये हैं जो कहते हैं कि सबसे दिलचस्प लगेगा जब आखिर में आप कहेंगे अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। आपको कैसे अंदाजा लगा कि आखिर में यही गाना बजेगा, क्योंकि यही गाना तो हमने रख छोड़ा है आखिर में बजाने के लिए। एक दौर था जब दूरदर्शन पर रविवार को फिल्म आया करती थी और रविवार को जो फिल्म आती थी उसका बहुत इंतजार रहता था। उस दौर में देखी गई जो सबसे यादगार फिल्म थी आपकी, वो कौन सी थी ये बताइएगा। दूरदर्शन के जमाने में जो रविवार की सबसे यादगार फिल्म होती थी। एक झलक इस गाने की बजा रहे हैं क्योंकि इस गाने का एक अंश आज की इबारत में था और उसके बाद आपसे विदाई लेने वाला वो गाना जिसके बारे में अभी अभी हमने कमेंट पढ़ा।

ये गाना जैसे रोमांच पैदा कर देता है। शैलेंद्र के ये बोल, सली चौधरी के तर्ज, बेमिसाल गाना है। इस गाने को काटते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसे शामिल करने का मन था। और अब वो गाना जो आप सभी से ये कहने की इजाजत देता है कि अब हम चलते हैं।

बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: दिल ने कहा,
1: सुनहरी खाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
0: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
0: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक रोमी शिराज, निर्देशक मुद्रा राक्षस।

0: सुभद्र सुभद्र,
1: ये मकान मालिक तो कुछ करता नहीं, इतने दिन से कहा जा रहा है, छत तक ठीक नहीं करवाई, अब देखो ये देखो जगह जगह से टपक रही है।
0: अरे मैं कहता हूँ तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं, शाम को जो चाट खाई थी लगता है बहुत खराब थी, खाकर और तबीयत खराब हो गई।
1: तुम्हारी तो तबीयत ही खराब रहती है।
0: अरे ऊपर कुछ ऐसी आवाज हुई जैसे कोई कूदा हो।
1: अरे तेज हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा।
0: हा?
1: तुम भी बस बुढ़ापे में लगता है ज्यादा सुनने लगे हो।
0: क्या क्या क्या, अरे अरे अरे जी जी जी जी, क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? मैं बूढ़ा कब से हो गया जी है? कब बूढ़ा हुआ मैं? कौन आ गया?
2: कौन? जीवनलाल जी यहीं रहते हैं क्या?
3: अरे भाई दरवाजा खोलिए।
0: कौन है देखूं तो जरा?
2: कौन है?
0: अरे पुलिस?
2: जीवनलाल जी आप ही हैं?
3: हाँ यही है जीवनलाल जी। अरे बाबा बहुत गंडगोल हो गया है, तुम्हारा जो फादर था ना।
0: हाँ।
3: वो हमारा पागल खाने में सुसाइड कर लिया।
0: क्या?
3: ये इंस्पेक्टर साहब बोलता है उसका लाश को आइडेंटिफाई करना है।
0: हाँ।
3: अभी चलना है।
0: अच्छा अच्छा चलता हूँ, जरा कपड़े पहन लूँ, अभी आया।
1: बात क्या है, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं?
0: पागल खाने से इंस्पेक्टर साहब खबर लाए हैं।
1: पागल खाने से क्या?
0: पिताजी ने आत्महत्या कर ली है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ।
1: कब? जब तक जिंदा थे तब तक तो हमारे लिए मुसीबत थे ही, अब मर कर भी चैन नहीं लेने देंगे।
0: अरे ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। लाओ देखो मेरा छाता कहाँ रखा है, लाओ जरा।
1: अरे अरे इस आंधी तूफान में कहाँ निकले जा रहे हो, कल सुबह चले जाना।
0: अरे बेकार की बातें मत करो, अभी जाना होगा मुझे, इंस्पेक्टर साहब लेने आए हैं मुझे।
1: लो अब उनकी वजह से द्वारे पुलिस आकर भी खड़ी हो गई।
0: बकबक बंद करो, देखो भाई छाता कहाँ रखा है, और सुनो कुछ पैसे भी दे देना। मेरा कुर्ता कहाँ रख छोड़ा है?
1: कुर्सी के पीछे टंगा तो है।
0: हाँ हाँ
1: ये लीजिए।
0: हाँ। अच्छा सुनो मैं चलता हूँ, वो गुड्डू के हाथ अपने देवर को भी खबर भिजवा देना।

0: आइए, इस तरफ से आइए
1: जी। वेरी सैड, वेरी सैड। वो कल दोपहर से ही गायब था, आज पागलखाना का पीछा का कुआं से उनका लाश को निकला गया। शायद वो कुआं में कूदकर ही उन्होंने जान दे दिया। ओरा अंदर है। ओरे बाबा, तुम्हारा फादर, माय गॉड, अजीब मैन था, माय गॉड, कल से गायब, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, माय गॉड, पता नहीं कब कुआं में गिर गया।
2: कुएं में कूद गया? अरे डॉक्टर साहब, आपको अपने रोगियों का ख्याल तो रखना चाहिए।
1: अरे बाबा, की रकम बात करता है तुम, हा? हम सभी का पूरा ख्याल रखता है, खाना कपड़ा।
2: हाँ, सब जानता हूँ, खाना कपड़ा। अरे इस तरह का खाना तो शायद जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे, और कपड़ा शायद ही किसी मानसिक रोगी को कपड़े पहने देखा हो हमने।
1: माय गॉड, जब पागल लोग अपना कपड़ा फाड़ देगा तो कोई कितना बार पहनाएगा।
2: अरे डॉक्टर साहब, आपके पास तो हर चीज का जवाब हाजिर है।
1: जीवनलाल बाबू, ये सब बात तो होता रहेगा, पहले आप डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए, हम कल सुबह इनको थाने भेज देगा।
0: अच्छा।
2: कितनी बदबू है यहाँ।
1: देखिए, इनको पहचानता है
2: जी।

0: यही मेरे पिताजी हैं। इनका इनका ये शरीर इतना फूल कैसे गया?
1: तुम्हारा फादर, माय गॉड, ऐसा पागल तो हमने अपना लाइफ में कभी नहीं देखा। कभी बोलता हम पागल नहीं, कभी बोलता हम पागल है। कई बार पांच पांच दिन खाना नहीं खाता, और कभी जितना दो बोलता और लाओ, नहीं देने से सब कुछ तोड़ता फोड़ता। ओ ओ देखो, ओ खिड़की का ग्लास सब उसी ने तोड़ा, माना करा तो हम पर अंडा खींच कर मारा। रियली ही वाज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए लूनेटिक।
2: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ।
3: डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लीजिए,
2: उन्होंने मुझे यहाँ बंद कराया है, मैं पागल नहीं हूँ।
1: ओरे बाबा, ये यहाँ कहाँ से आ गया है? तुम उधर चलो, उधर चलो तुम।
3: मैं पागल
1: नहीं, इधर आ जाओ, तुमका मुर्दा है।
2: पागल नहीं हूँ,
1: चलो बाहर जाओ।
0: डॉक्टर साहब, ये कौन है?
1: पागल है, इसका लड़का लोग छोड़ गया था।
0: हाँ, लड़का लोग छोड़ गया था।
1: हाँ,
0: लेकिन देखने से तो पागल नहीं लगता।
1: हाँ, नहीं लगता, पर हाय ठीक आपका फादर की तरह तो नहीं लगता।
0: लेकिन मेरे पिताजी तो पागल थे ना, वो तो पागल थे।
2: हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो,
3: मेरे बेटे को पकड़ो, मुझे।
1: अब आप घर जाइए, समझा? बारिश भी थाम गया है ना, और कल सुबह थाने में पहुंच जाइएगा। हाँ
0: जी, खुश बाबू आप ऐसा करिए, आप जाइए, मैं थोड़ी देर यही पिताजी के पास बैठूंगा।
1: अरे बाबा, यहाँ बैठेगा? ठीक है ठीक है, तो तुम बैठो, हम फिर जाता है। हम जाता है।
0: पिताजी, ये आपने क्या कर डाला, क्या कर डाला आपने पिताजी।

0: पिताजी, पिताजी ये आपने क्या कर डाला?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर ने दो लोगों को राजी किया था, वो आए और आपने उनसे बात तक नहीं की।
2: मुझे नहीं बेचना है अपना मकान। जानते हो कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर से।
0: 40,000 में खरीदे इस टूटे फूटे मकान के 15 लाख रुपए देने को तैयार हैं होटल वाले।
2: 50 लाख भी अगर दें तब भी नहीं बेचूंगा। और फिर इस उम्र में 15 लाख लेकर करूंगा क्या मैं?
0: पिताजी मेरा नहीं तो कम से कम अपने पोतों का तो ख्याल कीजिए आप।
2: उनका ख्याल तुम करो जीवन, वो तुम्हारे बेटे हैं।
0: पिताजी आप कुछ समझिए तो सही।
2: क्या समझूं, क्या समझूं मैं?
0: 15 लाख में इस मकान को बेचकर किराए का मकान ले लीजिए, कुछ पैसा बैंक में डाल दीजिए और
2: क्या?
0: और फिर पिताजी मुझे भी तो नए सिरे से अपना बिजनेस जमाना है, कुछ पैसा मुझे भी दे दीजिएगा, भले ही उधार दे दीजिए।
2: अपने रिटायरमेंट के पैसे से 30,000 मैंने दिए हैं तुम दोनों भाइयों को।
0: 30,000? अरे 30,000 में तो पिताजी बाहर एक छींका भी नहीं आता है।
2: होश में रह के बात करो जीवन।
0: होश में तो पिताजी आप नहीं हैं। मैं चाहूं तो कानूनन अपना हिस्सा ले सकता हूं आपसे।
2: क्या, तो फिर कान खोल कर सुन लो जीवन, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। और यही कह देना छोटे से भी, ज्यादा बहस की तो सारा मकान किसी संस्था को दान कर दूंगा।
0: अरे अरे अरे अरे आप तो काफी लंबी सोच के बैठे हैं पिताजी। मैं भी देखता हूं आपके सपने कैसे पूरे होते हैं।
2: क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम?
0: आग लगाना चाहता हूं इस घर को। यही चाहते ना, तो लीजिए ये रही माचे।
2: जीवन पागल हो गया तुम?
0: हाँ हाँ
2: बिल्कुल पागल
0: हो गया हूँ मैं पागल। मकान बेचकर दो मुझे पैसे, वरना रोक कर तुम अभी इसका भाव उठाने को। मैं
2: बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत छोड़,

0: माचिस को नहीं,
1: मैं कहता हूँ माचिस मुझे
0: नहीं छोड़ूंगा,
1: और मैं माचिस
0: नहीं छोड़ूंगा,
1: जीवन माचिस और
0: लगा दूंगा इस घर को। जो चीज मेरी नहीं है वो फिर किसी की भी नहीं हो सकती।
1: नीच बेहुदे बाप से हाथापाई करता है, छोड़ माचिस मैं कहता हूँ।
2: पकड़ो, लो पकड़ो ये माचिस, काम आएगी तुम्हारे कभी।
1: हे भगवान, इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था मैंने तुम दोनों को।
2: अरे इस बात की क्यों धौस मारते हैं आप? कौन बाप नहीं पढ़ाता लिखाता अपनी औलादों को?
1: इस तरह की औलाद से तो बे औलाद ही होना ठीक था। पता नहीं मेरे किस जन्म का पाप हो तुम दोनों भाई।
2: क्या पता कौन किसका पाप है। अरे मेरा मतलब है अंजनी को देखिए, नई फैक्ट्री के लिए 7 लाख रुपया दिया है उसके बाप ने उसे।
1: अंजनी, अंजनी जैसे अगर तुम होते ना जीवन तो 7 क्या 70 लाख का इंतजाम करता मैं तुम्हारे लिए।
2: पता नहीं क्या जिद है आपकी। देखिए पिताजी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये मकान आपको बेचना है या नहीं?
1: एक ही जवाब तुम कितनी बार सुनोगे जीवन?
2: ठीक है, तो मैं भी आपकी जिद तुड़वा करके ही दम लूंगा।
1: हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो जीवन, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुमको, और ये मकान भी किसी संस्था को दान कर दूंगा। कान खोल कर सुन लो, और ना सुन सको तो निकल जाओ इस घर से।
3: अरे पिताजी क्या हो गया?
1: अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अपने भाई के साथ बैठकर फैसला कर लो, अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, वरना निकल जाओ तुम भी। और ये भी, मैं शाम तक वापस आऊंगा।
3: अरे क्या बात हो गई भैया?
2: अरे वही उनकी पुरानी जिद, घर नहीं बेचेंगे।
3: ओ तो क्या बात ज्यादा बढ़ गई थी?
2: अरे ज्यादा, ये तो कहो संपत मैं ही अपने पर काबू किए था, वरना आज तो
3: इस तरह काम नहीं चलेगा भैया, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दुकान खरीदने के लिए मेरी भी बात चल रही है विवेक नगर में, मेन मार्केट में ही दुकान है, और 3 लाख रुपया पगड़ी मांग रहा है। अगर ये मकान बिक जाए तो मजा आ जाए। वो होटल वाले आए थे?
2: अरे आए थे, 15 लाख रुपए दे रहे थे।
3: 15 लाख? फिर
2: जी बात ही नहीं की इस बुढ़ो ब, ब, ब, तुम्हारे बाप ने।
3: आखिर क्यों?
2: नहीं बेचेंगे, अरे हम सबकी कब्र जो बननी है यहाँ।
3: 15 लाख? तब तो मैं वो कोनी वाली बड़ी दुकान भी ले सकता हूँ, 4.5 लाख रुपए पगड़ी है उसकी। ओफो, इस समय पता नहीं कौन आ गया। कौन है भाई?
4: अरे भाई मैं हूँ अवधेश।
3: पता नहीं कहाँ से आमर आई है।
2: सुनो, पैसे वैसे उधार मांगे तो मना कर देना।
3: अरे पहले पिछला उधार चुकाए तो।
4: अरे क्या हो रहा दोस्तों, बड़ा मुंह लटकाए बैठे हो।
5: भाभी जी कहाँ?
2: भाभी तुम्हारी बाजार तक गई है।
4: बड़े दुखी नजर आ रहे हो,
5: क्या हुआ?
2: अब क्या बताएं यार अवधेश, हम दोनों को पैसे की जरूरत है। पिताजी से मकान बेचने को जब भी कहते हैं मानते ही नहीं। बस आज इसी बात को लेकर काफी बकझक भी हो गई। आज तो उन्होंने हम दोनों को घर से निकल जाने की भी धमकी दी है। समझ में नहीं आता यार क्या करें। धमका रहे हैं कि ये मकान किसी संस्था को दान कर देंगे।
4: लो यार पान खाओ। तब तो ऐसा करो, एक संस्था तुम लोग भी खोल डालो।
3: देखो अवधेश, मजाक मत करो।
2: अच्छा एक बात बताओ, पिताजी के रहते क्या हम लोग इस मकान को बेच सकते
4: हैं? जब तक वो जिंदा हैं तब तक तो नहीं, मेरा मतलब है उनके रहते।
2: अरे यार उन्हें अभी क्या होने वाला है, इतनी दूर की तो फिर बेकार ही की सोचना।
3: बताओ भला, इतना पैसा पास में है फिर भी जैसे नहीं है।
2: अरे जी तो करता है जबरदस्ती उनसे मकान अपने नाम लिखवा कर बेच डाल।
4: अगर इस तरीके की मूर्खताएं सोचनी है तो मैं चलता हूँ यहाँ।
3: अरे भाई तुम तो भाई तुम ही कुछ अकल की बात बोलो ना।
4: भाई तरीका तो मेरी खुराफाती खोपड़ी में है, पर जरा मुश्किल।
3: असंभव तो नहीं है?
4: कदापि नहीं बालकों, कदापि नहीं। वो नवजोत चिकित्सा केंद्र का नाम सुना?
3: वो नवजोत चिकित्सक? अच्छा अच्छा, वो पागलों वाला अस्पताल। अरे वहाँ जहाँ वो 2-3 बार छापा भी पड़ा है।
4: और उसका आर्डन तो सरकारी धन दुरुपयोग में पिछले साल गिरफ्तार होते होते बचा था। तो ठीक है ना?
3: ठीक, मगर ये पागल खाने का क्या चक्कर है अवधेश बाबू?
4: देखो भाई, अगर तुम्हारे पिता को पागल करार करके इस पागल खाने में बंद करवा दिया जाए।
2: क्या बच्चों जैसी बातें करते हो यार, एक अच्छे खासे आदमी को पागलखाने में भर्ती कैसे करवा सकते हैं?
4: एक आधे पागल को तो भर्ती करवाया ही जा सकता है ना।
3: अरे यार क्या पहेलियां बुझा रहे हो, सीधी तरह ये बताओ ना कि कैसे संभव होगा।
4: देखो अपने पिता को रोज थोड़ा थोड़ा वो चूर्ण देना जो मैं बताऊंगा।
3: खा चुके वो ये चूर्ण।
4: अरे खाना तो खाएंगे, बस उसी में चुटकी भर मिलाकर दे देना, मगर खिलाना जरा प्यार से। अब फिर चमत्कार देखना, धीमे धीमे वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएंगे।
3: क्या?
4: और उसके बाद ही उन्हें पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा।
3: लेकिन अवधेश पागल खाने में तो काफी तकलीफ रहेगी उन्हें।
2: और क्या?
4: अरे हर महीने कुछ पैसे मुझे दे दिया करना, मैं उन्हें दे आया करूँगा, कोई कष्ट नहीं होने पाएगा उन्हें।
3: लेकिन मकान तो फिर भी पिताजी के ही नाम रहेगा ना।
2: और क्या,
4: एक दो कागजों में उनका अंगूठा लगवा लेंगे, नहीं काम बना तो दो तीन जाली कागज मैं बनवा दूंगा।
3: मगर नवजोत वाले उन्हें पागल कैसे मानेंगे?
4: तुम दोनों यार आते तो बेवकूफों की श्रेणी में ही हो। मैं तुम लोगों को एक बात पहले से साफ कर दूं कि ये फार्मूला अंधेरे में चलाएगा तीर जैसा है, और ये तीर निशाने पर लगेगा या नहीं इसकी 50-50% उम्मीद ही रखो। हाँ वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवजोत में तमाम लोग छुटकारा पाने के लिए अपने पिता से लेकर दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पत्नी तक को भर्ती करवा चुके हैं।
3: मगर अवधेश इसकी जांच भी तो कभी हो सकती है।
4: एक अच्छा भला आदमी साल भर इस कैद खाने में रह ले तो पागल तो हो ही जाएगा। अब वैसे तुम लोग चाहो तो अपने पिता के मरने का इंतजार कर लो, 20 साल 25 साल या।
2: अरे नहीं नहीं भाई, अब तो लगता है 20-25 साल तक भीख मांग करके ही गुजारा करना ही पड़ेगा।
3: मेरे ख्याल से अवधेश की बात ठीक ही है भैया, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना तो पड़ेगा ना।
4: अब पिताजी जैसी पुरानी चीज खोकर अफसोस ही क्या होगा।
2: पिताजी, पिताजी क्या कर डाला आपने, क्या किया पिताजी?
6: अरे झूललाल बाबू अभी गया नहीं आप, यही बैठा है।
2: जाता हूँ डॉक्टर साहब, जाता हूँ।
7: बड़ी देर कर दी आपने आने में, संपत भैया 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका।
2: संपत,
8: नमस्ते भैया।
2: नमस्ते नमस्ते, बड़े कमजोर नजर आ रहे हो।
8: अब हम बूढ़े हो गए भैया, फिर पास ऐसा है ही क्या जो खुश रखे स्वस्थ रखे?
2: पिताजी के बारे में पता चला तुम्हें?
8: पता चला, ये तो होना ही था एक दिन।
2: एक नई मुसीबत भी तो खड़ी हो गई
8: जी।
2: पुलिस सारी बातों की जांच करेगी, तुमको तो पता ही है, उनको पागल सिद्ध करने वाले कागज भी तो जाली ही थे। अवधेश ने जिससे बनवाए थे वो डॉक्टर ही कहां था, शायद कोई कंपाउंडर वगैरह था।
8: यानी एक और मुसीबत।
2: हाँ? एक और मतलब?
8: अब आपसे क्या छुपाना भैया, मेरे लड़कों ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया।
2: अरे अरे लेकिन संपत ये सब कैसे हुआ, कब हुआ?
8: क्या बताऊँ, मैं आपसे सब छुपाए रहा भैया। मैंने अपने लड़कों पर भरोसा करके उन्हें सारा पैसा दे दिया, दुकान उनके नाम कर दिया, और पैसा पाते उनकी आंखें पलट गई। रोज ही रोज मेरा अपमान होता है, घर से जाने के लिए कहा जाता है, जी तो करता है आत्महत्या कर लूं।
2: लेकिन पिताजी वाला मकान बेचने पर तो 7.5 लाख रुपए मिले थे तुम्हें।
8: मिले थे भैया, ज्यादा पैसा होने पर खर्च भी कुछ ज्यादा होता है, फिर पैसा पिताजी की मेहनत का था, हमारी मेहनत का नहीं था, जो ज्यादा खर्च होने पर दर्द होता।
2: सच कहते हो संपत, वो रुपए तो ऐसा लगा मानो सड़क पर पड़े मिले हो। पिताजी की बात और थी, हर काम करने से पहले 20 बार सोचते थे। अब लगता है मकान न बेचने का उनका फैसला भी ठीक ही था। अब देखो किराए के मकान में आए दिन मकान मालिक किराया बढ़ाता रहता है, न बढ़ाओ तो निकालने की धमकी ऊपर से।
8: अच्छा भैया, पुलिस जांच से अगर सारी बातों का खुलासा हो गया तो?
2: अरे नहीं नहीं, तब तो बुढ़ापा ही खराब होगा और जगह सही ऊपर से होगी।
8: खैर जो भी हो, मेरे से तो बेहतर स्थिति है आपकी।
2: हाँ ठीक कहते हो, फिलहाल तो बेहतर ही है। लड़की की शादी कर दी, लड़का है बस जरा चुप रहता है, घर आएगा आते ही अपने कमरे में घुस जाएगा, न किसी से बोलना न किसी से चालना।
8: अच्छा भैया चलता हूँ, वो फिर आऊंगा।
2: अच्छा अच्छा,
8: वो भैया वो
2: हाँ?
8: वो
2: कुछ कहना चाहते हो?
8: भैया पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मेरा मतलब है कि?
2: अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम कर दूंगा। और कुछ?
8: वो कहते तो ठीक नहीं लगता भैया, वैसे अगर मेरे लड़कों ने मुझे निकाल दिया तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ।
7: सुनो कर... जी बात सुनो जरा।
2: हाँ हाँ ठीक है भाई, संपत तुम्हारे रहने पर तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर तुम तो जानते हो एक ही कमरा फालतू है और मेहमान है कि आते ही रहते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए तुम मुझे तो तकलीफ में डालना पसंद नहीं करोगे ना?
8: क्या कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते भैया।
2: नमस्ते।
8: नमस्ते भाभी।
2: मुसीबत पर मुसीबत, अपने बच्चों से बनाकर रखेगा नहीं और यहाँ टिकने के लिए हाथ फैलाए हैं। एक तो पिताजी ने आत्महत्या करके और मुसीबत खड़ी कर दी, अगर जांच हुई तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा।
7: अरे क्या अशुभ बोल रहे हो?
2: अरे ठीक ही कह रहा हूँ। ये छड़ी किसकी रखी है?
7: अवधेश की होगी, भूल गया होगा।
2: अवधेश? अवधेश कब आया था यहाँ?
7: कल जब आप काम पर गए थे। वो तो आता ही तब है जब आप घर पर ना हो।
2: अरे लेकिन लेकिन वो आता क्यों है यहाँ?
7: क्या पता, अपने बेटे अनिल से पूछिए ना। हा? उसी से मिलता है, शायद कोई बिजनेस करना चाहता है अनिल।
2: बिजनेस? बिजनेस क्या मतलब, बिजनेस और अवधेश के साथ? अरे पता है सांप है वो, सांप सब कुछ बेच कर खा जाएगा।
7: क्यों, आपकी तो बहुत दोस्ती थी उससे, खाना पीना उठना बैठना।
2: अरे हाँ हाँ, जब थी तब थी। इसी बेवकूफ की बातों में आकर ही मैंने न जाने कितनी गलतियां कितने पाप कर डाले। जवानी के जोश में पता ही नहीं तक चला कि मैं पिताजी के साथ क्या सुलूक कर रहा हूँ। उस समय तो बस इसी अवधेश और संपत ने मिलकर पिताजी के खिलाफ भड़की आग में घी डाला था।
7: उन्होंने भड़काया और आप भड़क गए।
2: अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम भी मुझे ही दोष दे लो। नोच खाओ मुझे, नोच खाओ। उस समय पिताजी को पागल खाने भेजने से तुम भी तो मना कर सकती थी मुझे।
7: हाँ हाँ जरूर, उस समय लाखों रुपए के आगे कुछ सूझ रहा था आपको? उस समय तो खाने में जाने किस किस चीज का चूरन मिलाकर खिलवाते थे आप।
2: क्या बोली क्या बोली क्या बोली, बोलो बोलो जोर से बोलो, चीखो चीखो ताकि मोहल्ले वाले भी तो सुन ले।
9: अरे जी क्या हुआ, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप?
2: ये एक बात बताओ अनिल, ये अवधेश क्यों आता है यहाँ? क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? बिजनेस करना चाहते हो? पता है बेचकर खा जाएगा तुम्हें और तुम्हारे कपड़े भी।
9: मगर वो तो आपके दोस्त हैं।
2: कोई दोस्त वोस्त नहीं है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो मेरा, समझे?
9: मगर क्या बिगाड़ा अवधेश चाचा ने?
2: उसकी वजह से ही तुम्हारे बाबा ने आत्महत्या कर ली।
9: बाबा ने? वो जो पागल खाने में बंद थे?
2: हाँ हाँ वही।
9: बाबा ने आत्महत्या की।
2: क्या क्या बिजनेस समझा रहा था तुम्हें? क्या बिजनेस समझा रहा था वो तुम्हें?
7: बेटे, तुम्हारे बाबा ने अवधेश की वजह से नहीं, इनकी वजह से आत्महत्या की है। इन्होंने

0: चुप कर, मैं कहता हूँ चुप कर।
1: पिताजी क्या हो गया है आपको, माँ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? बिजनेस में बुराई ही क्या है, आखिर मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। महज 3 लाख से मेरा बिजनेस शुरू हो जाए।
0: अच्छा अच्छा, और ये 3 लाख रुपए तुझे देगा कौन?
1: अवधेश चाचा ने कहा है कि रुपया आपके पास है, आखिर आपने भी तो बाबा से पैसा लिया होगा।
0: मैंने क्या मतलब, और क्या बताया अवधेश ने तुझे, और क्या क्या बताया तुझे? कौन खोल कर सुन लो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें, समझे, एक कौड़ी भी नहीं दूंगा।
1: समझिए आप, हाँ? आप अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो कानूनन अपना हक ले लूंगा मैं आपसे।
0: क्या कहा तुमने? कानूनन अपना हक लोगे? तो जाओ सड़क पर और मांगो कानून से अपना हक।
1: नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कौन निकालता है मुझे यहाँ से।
0: हाँ? और ये हाथ में क्या है तुम्हारे, ये हाथ में क्या है तुम्हारे?
1: हाथ में आपसे क्या मतलब, आप तो घर से निकाल रहे थे मुझे, वैसे ये आप ही के खाने के लिए लाया हूँ मैं।
0: खाने के लिए? मेरे खाने के लिए? हो तो ये हो रहा है इस घर में, ये हो रहा है। अरे खुले आम क्यों नहीं खिला देते जहर, अरे गला घोट कर क्यों नहीं मार देते मुझे? खिलाओ खिलाओ खिलाओ जहर मुझे, खिलाओ।
1: ये खिलाओ। क्या अनशन बक रहे हैं आप, कौन क्या खिला रहा है आपको?
0: अरे मैं सब समझ गया हूँ तुम लोगों की चाल, मैं सब समझ गया हूँ। कौन खोल कर सुन लो, आज से अपने लिए खाना मैं खुद बनाऊंगा, और तुम माँ बेटे को निकाल करके ही दम लूंगा। अवधेश के साथ मिलकर मेरी दौलत हड़पना चाहते हो, मुझे पागल खाने में भर्ती कराना चाहते हो? अरे अरे कमबख्तो, शहर खिलाकर आधा तो मार ही दिया है मुझे।
2: ये क्या कह रहे हैं आप?
3: अरे भाई क्या हो रहा है?
1: देखिए ना चाचा, इनका तो लगता है दिमाग चल गया है, पागल हो गए लगता है।
0: अरे मैं पागल? अरे मैं नहीं हूँ पागल, तुम सब हो पागल, नहीं हूँ मैं पागल। तुम अगर मुझे पागल खाने भेजोगे तो नहीं जाऊंगा मैं, हरगिज नहीं जाऊंगा वहाँ।
3: आपकी बात भी सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन सच तो बताएगा डॉक्टर ही। क्यों अनिल भतीजे?
0: क्या कहा? डॉक्टर? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊँ नहीं जाऊंगा सर जी, मैं जाऊँ नहीं जाऊँगा।

जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आपने रोमी शिराज का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे मुद्रा राक्षस और ये नाटक आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।